तीर्थ उनों युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा, घोड़ियां दा, हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे, आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रचना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे आं यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउंगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजा है ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लैंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लैंदे हन। भाई लैणा जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके, पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए, सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सानू कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तू अपनी राह तू चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन्हां अखर

ना पूछो जाति। ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया, जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने। कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना, जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जाणो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आप दी चोली पावां।

नाम देव भगती करने वास्ते मंदिर विच आ गए। धर्म दे ठेकेदारा ने चुक के बाहर मारे। पंडता ने आखिया तू नीवी जात विच एक शुद्ध ते मंदिर विच किवें आके बह गए? कहिंदे ने मोढ़े ते कमली पाई मंदिर दे पिछवाड़े जाके बह गए। परमात्मा अगे रोस कीता, हे परमात्मा

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दे तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कढ़े हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हर मंदिर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हर मंदिर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई पवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूहानी रूह की खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहा। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

कीमत अदा नहीं हो सकती जिस वस्तु दी ओ मिल जावे तां उसनू प्राप्त कहिंदे हां। आख्या तू 84 लख जूना विचों त्रिगड़ जूना विचों दुख भोगदा होया अकाल पुरख दी रहम ते नदर होई तैनू मनुखा देही प्राप्त होई है ते एहो ही तेरी बारी है एही वक्त है तू इसनू जप जप के सेवा करके प्रभु दी प्राप्ति कर लवे जन्म मरण तो रहत हो जावे ते जे ना कीता तो फिर ए अवसर कदे मिलेगा नहीं तैनू इसलिए आप बख्शिश करदे हन।

धरती दी पालना करने वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दी जय जांचे संत जन उस गोपाल की सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

एक धरती, एक आकाश, दस ए परमेश्वर दा सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

ते बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव मैं सुनया अल्लाह तेरा यार है तू जो कहना है परमेश्वर कर देंदा है ते मैं तेरे राम दे कम देखना चाहना जो बादशाह ने कहा भगत नामदेव ने बाणी च बयान किया कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनू जानू मार देंगा नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच इस

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई। गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई, भगत जी आप बयान करते।

हाथ जोड़े भगत नामदेव दे चरणा ते मत्था टेकिया आखिया ऐ नामदेव बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए मैनू अपनी गां समझ के माफ कर दे। तो नामदेव जी ने बादशाह नूं उस वक्त

बादशाह ने, खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया, पर नामदेव जी ने वो सारा सोना चांदी गरीबा च वंड दिता। आप तुर पे, बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देने, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पे, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पे। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

दिसे जा तुसा आप वर्तनी है संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दी। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती की, बादशाह भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दी। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सीजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक बारी दिखा दियो ताकि मैनू तसल्ली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कंदे ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव जदों पंडता ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचो कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने अगर वो दयाल हो जाए

बादशाह ने पूछा, भगत जी एक सेज ता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदे, पेट करदे दसां नूं आंदी फिरत विचों, ता ओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदे। इस सारियां सेजां तैनू मिलनियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजा हुण तैनू नहीं मिलनी। तां बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे नहीं पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर, ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं हुंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई है, खंड ब्रह्मांड बनाए ने, उस गोपाल दी असी पूजा करदे हां, जिहड़ा कदी मरदा नहीं, किसे कोलों डरदा नहीं।

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान कीता। जांचे कर निकट वर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद निजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला। एते जी जांचे है करी, सर्व व्यापक अंतर अरे, प्रणवै नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना बयांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं। सब कुछ हो दे, ओ बनान वाला है, प्रणवै नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

सब ही बिके बचपन में परमेश्वर नाही। जमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है। जमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है। नहन है न बन है समान रूप।

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड।

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप